है कयामत मत तड़पा ऐसे तू न करना इंसाफी जो गलती करने वाला हूं मैं उसके लिए पहले से ही मांगता हूं माफी

0: Hela Nashala. Hela Nashala.
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

0: डीवाई एफएम 90.1 मेगाहर्ट्ज़
1: आमगोते गाहन की वारंग हंदार ने तेमी हैं बाय दोस्तों खांग अने बाय दोस्तों फोनों जे मेल तब फोनों बर्थडे से हंदांग कुरंग अधि माँ उन दोगु कमे एका मुको बिल ता दक्कन ता दुवा हकुए संदान नुन तेने करंट बिल फेम बिल फोन बिल कस दाहिन नुवान हंदाम विसुरे वगुतुं वगुता फाही पे में दूरी को फ्यासा वेस ट्रांसफर करेवे क्या गेम बिल कंडा लाफ अ पेमेंट रिक्वेस्ट वेस फोन वे साड़ी दो गेम में गरी चार्ज वेस हम फाही पे इंग अनलिमिटेड रीलोड अधिरास्टस फ्यासा के हुरिहा मुआमलाते फाही पे में दूरी को फाही पे वारा फाही

0: बेब, हीवे ता दुआ कुस आने का मैं सिर रुको राने हैं।
1: ए जुमला याए को सियारा के हिता कुड़ा बिरुवेरी कमें पदे मोनमती मायूस कम फाड़ विगें दिया। माजी के कंता वेफा वागो तुंग एना के हितु का आदिवेस कोमेवेस मरे के जिहिलो में गोवे। सियारा सीरियस वेलमुं जान के में कहें घड़ाले।
2: जान प्लीज, आरे रोंचे काल का मैं देनु कुर अच्छे।
1: जान सियारा के निकुरिया बोस्ते मुंग एना के हास कम फील हुआ दे मसके कुरी।
0: कम ऑन, आदि कामे विया की वेसनो। देंगे हैं नोबड़ा नेंगे, है पीता। मिगड़ी का बेनु में वारा होनु खालो कॉफी।
1: सियरा हिनी तुम वमु कोटरी निकुन नंगी गया गई। जान एना के लोबी वां बिमी हादिया दिमाया बलहट टैगिंग इनी उफलों फुरीकिं बाही धका आए को। जाना सियरा के कैबिन्यंग इमस्वी, ते मी होंगे कुलमकं ही नरुकमें नादे। सियरा के हमें कनिहुरी मी है कि एना के दोंधा। सेरा हुरिहा कमिंग हिस्सा कुरनी आबद विस्तंतया रेकडु गडिन दिहे जेहि जाना दोंतेया सेरा तिबी गेगे सिटिन रोमगा
2: सिया ओय देखु दिन राजेम बेरताम वेनो एकु गवगुत कोलें हेद कोल्ला वकिम वे सुलम वाणेनो देमी हुंगे कने हेद कोल्ला देतरियाकु वगुत होद वाणे
0: आ जान में सोरे तिकम आवरा विस्नागे हत्तहा वेस दोंते कने वेदानेति
2: ये उन्नो आने हम दोनों देखे थी हालों पे वेता मेरे सियरा वेस तीवर कल्लो ही पेनुए
3: आ देंगे भी अम्मी हरिंगा ता